ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं और अब कुछ मजीद खबरें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ नए हमलों को मनसूख करने के ऐलान के बावजूद ईरान सख्त गिर मौकिफ पर कायम है। ट्रंप मुबैना तौर पर इस हफ्ते के आखिर में एक बड़ा हमला करने का मंसूबा बना रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वह शराइत के साथ इसे मनसूख करने पर तैयार हैं। अमरीकी सदर ने हफ्ते के रोज सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान और मशरक वस्ता के दीगर ममालिक ने अमरीका से कहा है कि वो किसी भी ऐसे हमले को रोक दे जो माहदे पर इतफाक के दायरा कार में हो। इस माहदे में अबनाए हुरमस को फौरी और मुकम्मल तौर पर खोलना और ईरान से लाहक जौहरी खतरे का खात्मा शामिल था। ट्रंप ने लिखा कि दरख्वास्त की बुनियाद पर उन्होंने हमला मनसूख करने पर रजामंदी जाहिर की, इस शर्त पर कि वो तेजी से डील कर सकें। ईरान के सरकारी मीडिया ने इतवार के रोज एक आला ईरानी दिफाई अहलकार के हवाले से कहा कि मुल्क दुश्मन के हालिया बयानात को एक हकीकी और काबिल एतबार खतरे के तौर पर देखता है, चाहे इसे नफसियाती हरबों के तौर पर पेश किया जाए। एहलकार ने मुबैना तौर पर यह भी कहा कि ईरान ना तो चौकसी छोड़ेगा ना ही गैर फाल रहेगा। एहलकार ने मजीद कहा कि ईरान अपनी फौजी तैयारी में इजाफा और दिफाई सलाहियत को मजबूत करेगा। इंडोनेशिया के जजीरे जावा के शिमाल मशरकी पानियों में एक कश्ती में आग लग गई। तलाश और बचाव की मुल्की एजेंसी का कहना है कि इतवार की शाम 4 बजे तक 5 अफराद हलाक हो चुके थे और 41 दीगर लापता थे। एजेंसी का कहना है कि आग दिन के अवाइल में उस वक्त लगी जब कश्ती मशरकी जावा सूबे के मादूरा जजीरे के पास से गुजर रही थी। एजेंसी का कहना है कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त कश्ती 271 अफराद को मशरकी जावा के सूरा बाया से जनूबी सलावेसी सूबे के मकासर लेकर जा रही थी। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। जापान के शिमाली शहर आओमोरी में मौसम गर्मा के मशहूर तरीन मुल्की त्योहारों में से एक के आगाज पर शानदार फ्लोट्स की परेड हुई है। त्योहार में सालाना तकरीबन 10 लाख अफराद शरीक होते हैं। इसकी सबसे बड़ी कशिश नेबुता कहलाने वाले दियोहेकल फ्लोट से वो तारीखी जंगजुओं, अफसानवी शख्सियात और दीगर मौजूआत की अक्कासी करते हैं। इतवार को इस साल के त्योहार के पहले दिन शाम 7 बजे 16 फ्लोट से जुलूस शुरू हुआ। हर फ्लोट की ऊंचाई तकरीबन 5 मीटर थी। शुरका ढोल और बांसुरी बजाते हुए 3 किलोमीटर से ज्यादा तवील रास्ते पर चले पुरजोश रक्कासों के एक ग्रुप ने माहौल को मजीद पुर रौनक बनाने में मदद दी। 40 के पेटे की एक तमाशाई खातून ने कहा कि वो पहली बार त्योहार देखने पर बहुत पुरजोश हैं। उन्होंने बताया कि वो

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 4 अगस्त मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानों से सुने समाचार। जापान के कुमामोतो प्रीफेक्चर में आए शक्तिशाली भूकंप को एक सप्ताह पूरा हो गया है। इस भूकंप में कई लोग मारे गए और हजारों मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गौरतलब है कि 28 जुलाई को मैग्नीट्यूड 7.1 का भूकंप आया था। उकी शहर और हिकावा नगर में इस भूकंप की तीव्रता जापान के भूकंप मापी पैमाने पर 7 दर्ज की गई थी, जो सर्वोच्च स्तर है। मंगलवार सुबह 7:30 बजे तक कुमामोतो प्रीफेक्चर 38 मौतों की पुष्टि कर चुका था, जिनमें से एक की मौत शायद आपदा संबंधी कारणों से हुई है। मंगलवार दोपहर 2 बजे तक प्रीफेक्चर के 146 आश्रय स्थलों में 7,600 से अधिक लोग रह रहे थे। 13,300 से अधिक मकानों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से करीब 700 पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। इस क्षेत्र में भीषण गर्मी भी लोगों की तकलीफ बढ़ा रही है। सोमवार को प्रीफेक्चर में तापमान रिकॉर्ड तोड़ते हुए 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। इसके अलावा क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधियां अब भी उच्च बनी हुई हैं। पिछले सप्ताह के भूकंप के बाद से मंगलवार सुबह 10 बजे तक 390 से अधिक झटके महसूस किए जा चुके थे। कुमामोतो प्रीफेक्चर में आए शक्तिशाली भूकंप को एक सप्ताह पूरा हो चुका है और ऐसे में एक विशेषज्ञ ने आश्रय स्थलों में रहन सहन की बेहतर परिस्थितियों की मांग की है, ताकि हताहतों की संख्या को बढ़ने से रोका जा सके। गौरतलब है कि आपदा संबंधी कारणों से एक महिला के मारे जाने की खबर मिली है। माना जाता है कि इस महिला ने एक कार में शरण ली थी, जिस दौरान तापघात से उसकी मौत हो गई। जापानी रेडक्रॉस साइतामा अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी सुबोई मोतोहिरो ने आगाह किया है कि अगर आश्रय स्थलों में रहन सहन की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि 2024 के नोतो प्रायद्वीप भूकंप के लगभग 7 से 10 दिन बाद आपदा संबंधी मौतों की संख्या चरम पर पहुंच गई थी। सुबोई ने रहन सहन की बिगड़ती परिस्थितियों के कारण तनाव होने से दिल के दौरे और अस्थमा के बढ़ते जोखिम के बारे में चेतावनी दी है। उनका ये भी कहना है कि कुमामोतो में भीषण गर्मी से तापघात की समस्या और भी गंभीर हो सकती है। उन्होंने आश्रय स्थलों में रहन सहन की परिस्थितियां सुधारते हुए उन्हें बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। शक्तिशाली तूफान डॉल्फिन के मंगलवार को पश्चिम की ओर बढ़ने के कारण टोक्यो के ओगासावारा द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चल रही हैं। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने डॉल्फिन तूफान को विशाल और बेहद शक्तिशाली बताया है। अधिकारियों ने द्वीपवासियों से ऊंची लहरों और तेज हवाओं से सावधान रहने तथा बुधवार तक जरूरत ना पड़ने पर घर से बाहर ना निकलने का आग्रह किया है। मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार ओगासावारा में बुधवार तक समुद्र बेहद अशांत रहेगा। मंगलवार को लहरों की ऊंचाई 11 मीटर और बुधवार को 9 मीटर रहेगी। अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार को हवा की रफ्तार इतनी तेज हो सकती है कि उससे चीजें उड़ने या ट्रक पलटने का खतरा रहेगा। आशंका है कि डॉल्फिन तूफान तेज हवाओं के घेरे के साथ पश्चिम की ओर बढ़ते हुए ओकिनावा और अमामी क्षेत्रों के निकट पहुंचेगा। ओकिनावा में बुधवार से और अमामी में बृहस्पतिवार तक समुद्र बेहद अशांत रहने का अनुमान है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: म्यांमार की सेना समर्थित सरकार का कहना है कि लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सांग सूची ने अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस समिति आईसीआरसी के एक प्रतिनिधि से मुलाकात की है। सरकार के अनुसार म्यांमार में आईसीआरसी प्रतिनिधि आर्नोट देबबाक ने सोमवार सुबह राजधानी नेपिदो में आंग सांग सूची से मुलाकात की। इस खबर के साथ प्रकाशित तस्वीरों में दोनों को हाथ मिलाते देखा जा सकता है। एक अन्य तस्वीर में सूची को संभवतः अपने 81वें जन्मदिन का केक काटते दिखाया गया है, जो जून में था। आईसीआरसी के अनुसार सोमवार को हुई मुलाकात स्वतंत्रता से वंचित लोगों से मिलने के लिए उसके मानकों और प्रक्रियाओं के अनुरूप थी। उसका कहना है कि दोनों ने अकेले में बात की। सेना ने 2021 में तख्ता पलटकर सत्ता हथियाने के बाद से सूची को हिरासत में रखा हुआ है। सैन्य शासन के तहत चले एक मुकदमे में सूची को भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों में दोषी ठहराया गया था। सेना समर्थित सरकार ने अप्रैल में घोषणा की थी कि सूची को एक निर्धारित आवास में नजरबंद कर दिया गया है, लेकिन सरकार ने उनके सटीक ठिकाने का खुलासा अब तक नहीं किया है और ऐसे में सूची के स्वास्थ्य और रहन सहन की स्थिति को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। टोक्यो के एक चिड़ियाघर ने बताया है कि 3 शेरों की मौत हो गई है। पशु चिकित्सकों को संदेह है कि उनकी मौत तापघात से हुई। जुलाई मध्य में तामा चिड़ियाघर के 16 शेरों में से 10 बीमार पड़ गए। इनमें से कुछ अपने पैरों पर खड़े होने में असमर्थ हो गए और अन्य की खुराक कम हो गई। कर्मचारियों ने शेरों के शरीर को ठंडा करके और दवा देकर उनका इलाज करने की कोशिश की, फिर भी 28 जुलाई को 3 वर्षीय शेरनी की मौत हो गई। उसके बाद 31 जुलाई को 11 वर्षीय और 2 अगस्त को 15 वर्षीय शेरनी की भी मौत हो गई। चिड़ियाघर के अनुसार जांच के नतीजे आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा, लेकिन पोस्टमार्टम से पता चला है कि तीनों शेरनियों के शरीर में पानी की कमी थी और कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। 3 अन्य शेरों का इलाज अभी भी जारी है। चिड़ियाघर का कहना है कि वो इन मौतों को गंभीरता से ले रहा है और वो बाकी बीमार शेरों का इलाज करना जारी रखेगा और उनकी सेहत का ध्यान रखेगा। उसका कहना है कि जनता को शेर दोबारा कब दिखाए जाएंगे, इस बारे में अभी फैसला नहीं लिया गया है। जापान के 3 प्रमुख वित्तीय समूहों ने जून तक के 3 महीनों के लिए रिकॉर्ड शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जिसका एक कारण उच्च ब्याज दरों से आय में वृद्धि है। मित्सुबिशी यूएफजे ने 800 अरब येन यानी 5 अरब डॉलर से अधिक का शुद्ध लाभ कमाया, जो पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में येन में लगभग 48% की वृद्धि है। सुमितोमो मित्सुई ने 500 अरब येन का मुनाफा दर्ज किया, जो 33% का इजाफा है। वहीं मिजोहो ने 45% की वृद्धि के साथ 420 अरब येन का लाभ कमाया। सुमितोमो मित्सुई और मिजोहो के लिए लगातार 3रे वर्ष ये त्रैमासिक आंकड़े रिकॉर्ड उच्च हैं। ब्याज से होने वाली आय में बढ़ोतरी के अलावा विलय व अधिग्रहण सेवाओं से प्राप्त कमीशन ने भी मजबूत परिणामों में योगदान दिया।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 23वें पाठ में अपनी पसंद बताना सीखेंगे।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो होक्काइडो घूमकर टोक्यो वापस आ चुकी है। टोक्यो में वो अपने दोस्तों आयाका और माइक के साथ एक कैट कैफे में आई है। माइक अमरीकी है और जापान की पॉप संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानता है।
0: कैट कैफे ऐसी दुकानें होती हैं जहां आप चाय या कॉफी का आनंद लेते हुए बिल्लियों के साथ खेल सकते हैं।
1: तो आइए सुनते हैं 23वें पाठ की बातचीत।
2: ご飯を食べています。本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले ताम ने बिल्लियों को देखते हुए कहा,
1: कितनी प्यारी हैं।
2: मीना गोहान ओ तबेते इमासु।
1: सब खाना खा रही हैं।
0: फिर आया का बोली,
2: होंतो नी कावाई ने।
1: सचमुच प्यारी हैं।
0: उसके बाद आया का ने बिल्लियों को आवाज लगाई,
2: ओइदे ओइदे।
1: इधर आओ इधर आओ।
0: आया का ने अपने पास आई बिल्ली को पुचकारते हुए कहा,
2: वाताशी वा कोनो को गा सुकी।
1: मुझे ये वाली पसंद है।
0: फिर ताम ने दूसरी बिल्ली को सहलाते हुए कहा,
2: वाताशी वा कोनो नेको गा सुकी देसु।
1: मुझे ये बिल्ली पसंद है।
0: माइक भी माहौल का आनंद ले रहा था। वो बोला,
3: नेको कैफे ते रिलैक्स देखिरियो ने।
0: कैट कैफे आकर बहुत सुकून मिलता है ना।
1: तब ताम ने जवाब दिया,
2: होंतो देसु ने।
1: सही कहा।
0: कैट कैफे में आमतौर पर अलग अलग तरह की बिल्लियां होती हैं। आप भी उनमें से अपनी मनपसंद बिल्ली के साथ खेल सकते हैं।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
2: वाताशी वा कोनो नेको गा सुकी देसु।
1: यानी मुझे ये बिल्ली पसंद है। ये वाक्य याद करके आप अपनी पसंद बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
4: वाताशी
0: का अर्थ है मैं और उसके बाद लगा है वा जो विषय सूचक कारक है। उसके बाद आया है
4: नेको
0: यानी बिल्ली।
4: कोनो नेको
0: का अर्थ है ये बिल्ली।
1: आगे है
4: स्की देस
1: जिसमें से
4: स्की
1: एक ना विशेषण है और उसका मतलब है पसंद।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चीज पसंद हो उसके नाम के बाद कारक गा लगाते हैं और उसके बाद बोलते हैं
4: स्की देस।
0: अगर आपको बिल्लियां यानी
4: नेको
0: पसंद हैं तो वाक्य बनेगा
4: नेको गा स्की देस।
1: ध्यान रखिएगा कि नेको ओ स्की देस बोलना सही नहीं है।
4: स्की देस
1: का
4: स्की
1: यानी पसंद क्रिया नहीं है, ना विशेषण है। विशेषण जिस चीज की विशेषता बताता है उसके नाम के बाद कारक ओ नहीं गा लगाया जाता है।
0: अगर हम आयाका की पंक्ति पर ध्यान दें तो उसने भी कहा था वाताशी वा कोनो को गा सुकी, जिसका अर्थ है मुझे ये वाली पसंद है।
1: करीबी मित्र से बात करते समय आप अंत का
4: देस
1: छोड़ सकते हैं और
4: स्की देस
1: की जगह सिर्फ
4: स्की
1: बोल सकते हैं।
0: एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि ताम और आयाका दोनों ने अपने वाक्य में वाताशी वा यानी मैं लगाया, लेकिन हम आपको पिछले पाठों में बता चुके हैं कि अगर संदर्भ स्पष्ट हो तो ये शब्द बोलने की जरूरत नहीं होती है।
1: यहाँ ताम और आयाका अपनी अपनी पसंद बता रही हैं और इस बात पर जोर दे रही हैं कि उनकी पसंद एक दूसरे से अलग है। जैसे ताम ने कहा,
4: वाताशी वा कोनो नेको गा सुकी देसु,
1: यानी मुझे ये बिल्ली पसंद है। यहाँ उसने खास तौर से कहा
4: वाताशी वा।
0: तो अब उच्चारण का अभ्यास करते हैं, सुनिए और दोहराइए।
4: सुकी देसु, कोनो नेको गा सुकी देसु।私はこの猫が好きです。
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें मनपसंद खाने की चीज की बात हो रही है।
5: 食べ物は何が好きですか？
2: 寿司が好きです。
0: इस बातचीत में पहले पुरुष ने पूछा,
5: 食べ物は何が好きですか？
0: खाने में क्या पसंद है?
1: यहाँ
4: 食べ物
1: का अर्थ है खाना या खाने की चीज। उसके बाद लगा है विषय सूचक कारक वा।
4: नानी
1: एक प्रश्नवाचक शब्द है जिसका अर्थ है क्या। तो
4: नानी गा स्की डेस
1: का अर्थ है क्या पसंद है।
0: महिला ने उत्तर दिया,
2: सुशी गा स्की डेस,
1: सुशी पसंद है।
0: सुशी एक जापानी व्यंजन है जो पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है।
1: तो अब ये बातचीत दोबारा सुनिए और उत्तर दोहराइए।
4: तबेमोनो वा नानी गा स्की डेस का, सुशी गा स्की डेस।
0: अब वाक्य बनाने का अभ्यास करते हैं। मान लीजिए आपको लोकप्रिय जापानी संगीत यानी जे पॉप पसंद है, तो ये बात कैसे बताएंगे? जे पॉप को जापानी में कहते हैं
4: जे पॉप।
0: तो कोशिश कीजिए,
2: जे पॉप गा स्की देस।
1: अब मान लीजिए आपको जापानी चित्र कथाएं पसंद हैं, जिन्हें जापानी भाषा में कहते हैं
4: मांगा।
1: तो अपनी पसंद बताने की कोशिश कीजिए,
5: मांगा गा स्की देस।
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
2: होंतो देस ने,
4: होंतो
1: है
4: होंतो,
1: यानी सही कहा का लघु रूप।
4: होंतो देस ने
1: का भी मतलब है सही कहा। इस वाक्य का इस्तेमाल किसी के विचार या राय पर सहमति दिखाने के लिए किया जाता है।
0: तो आप भी सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: होंतो देस ने।
1: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: कवाई, मिन्ना गोहान ओ तबे ते इमास।
6: 本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。
2: 私はこの猫が好きです。
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
7: マイクと一緒にポップカルチャー。
0: अब हम लेकर आए हैं अंश माइक के साथ पॉप संस्कृति, जिसमें आज हम बताएंगे जापान में तरह तरह के दिलचस्प कैफे के बारे में।
1: जापान में ऐसे बहुत सारे कैफे बन गए हैं जहां केवल खाना पीना ही मुख्य आकर्षण नहीं है। ऐसा ही एक उदाहरण है कैट कैफे, जिसका आज के पाठ में जिक्र है।
0: जिन लोगों को उल्लू या खरगोश पसंद हैं, वे उल्लू या खरगोश कैफे में जा सकते हैं। आपकी जापानी भाषा बहुत अच्छी ना भी हो तो भी आप ऐसी जगह नए दोस्त बना सकते हैं, क्योंकि वहां आए सारे ग्राहकों की रुचि एक जैसी होती है।
1: मेड कैफे थोड़े अलग होते हैं। वहां खाना परोसने वाली लड़कियां फ्रेंच मेड जैसे कपड़े पहनती हैं और ग्राहकों को मालिक कहकर संबोधित करती हैं।
0: इसके अलावा जापान में आशी यू कैफे भी हैं, जहां आप गर्म पानी में पैर डालकर बैठ सकते हैं। प्लैनेटेरियम यानी तारामंडल कैफे भी हैं, जहां आप चाय पीते हुए सितारों की दुनिया में खो सकते हैं।
1: इसके अलावा एनीमे और गेम्स पर आधारित कैफे तो हैं ही।
0: तो आप भी जापान में अपना मनपसंद कैफे जरूर ढूंढिएगा।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में अपनी नापसंद बताना सीखेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 4 अगस्त मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानों से सुने समाचार। जापान के कुमामोतो प्रीफेक्चर में आए शक्तिशाली भूकंप को एक सप्ताह पूरा हो गया है। इस भूकंप में कई लोग मारे गए और हजारों मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गौरतलब है कि 28 जुलाई को मैग्नीट्यूड 7.1 का भूकंप आया था। उकी शहर और हिकावा नगर में इस भूकंप की तीव्रता जापान के भूकंप मापी पैमाने पर 7 दर्ज की गई थी, जो सर्वोच्च स्तर है। मंगलवार सुबह 7:30 बजे तक कुमामोतो प्रीफेक्चर 38 मौतों की पुष्टि कर चुका था, जिनमें से एक की मौत शायद आपदा संबंधी कारणों से हुई है। मंगलवार दोपहर 2 बजे तक प्रीफेक्चर के 146 आश्रय स्थलों में 7,600 से अधिक लोग रह रहे थे। 13,300 से अधिक मकानों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से करीब 700 पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। इस क्षेत्र में भीषण गर्मी भी लोगों की तकलीफ बढ़ा रही है। सोमवार को प्रीफेक्चर में तापमान रिकॉर्ड तोड़ते हुए 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। इसके अलावा क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधियां अब भी उच्च बनी हुई हैं। पिछले सप्ताह के भूकंप के बाद से मंगलवार सुबह 10 बजे तक 390 से अधिक झटके महसूस किए जा चुके थे। कुमामोतो प्रीफेक्चर में आए शक्तिशाली भूकंप को एक सप्ताह पूरा हो चुका है और ऐसे में एक विशेषज्ञ ने आश्रय स्थलों में रहन सहन की बेहतर परिस्थितियों की मांग की है, ताकि हताहतों की संख्या को बढ़ने से रोका जा सके। गौरतलब है कि आपदा संबंधी कारणों से एक महिला के मारे जाने की खबर मिली है। माना जाता है कि इस महिला ने एक कार में शरण ली थी, जिस दौरान तापघात से उसकी मौत हो गई। जापानी रेडक्रॉस साइतामा अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी सुबोई मोतोहिरो ने आगाह किया है कि अगर आश्रय स्थलों में रहन सहन की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि 2024 के नोतो प्रायद्वीप भूकंप के लगभग 7 से 10 दिन बाद आपदा संबंधी मौतों की संख्या चरम पर पहुंच गई थी। सुबोई ने रहन सहन की बिगड़ती परिस्थितियों के कारण तनाव होने से दिल के दौरे और अस्थमा के बढ़ते जोखिम के बारे में चेतावनी दी है। उनका ये भी कहना है कि कुमामोतो में भीषण गर्मी से तापघात की समस्या और भी गंभीर हो सकती है। उन्होंने आश्रय स्थलों में रहन सहन की परिस्थितियां सुधारते हुए उन्हें बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। शक्तिशाली तूफान डॉल्फिन के मंगलवार को पश्चिम की ओर बढ़ने के कारण टोक्यो के ओगासावारा द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चल रही हैं। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने डॉल्फिन तूफान को विशाल और बेहद शक्तिशाली बताया है। अधिकारियों ने द्वीपवासियों से ऊंची लहरों और तेज हवाओं से सावधान रहने तथा बुधवार तक जरूरत ना पड़ने पर घर से बाहर ना निकलने का आग्रह किया है। मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार ओगासावारा में बुधवार तक समुद्र बेहद अशांत रहेगा। मंगलवार को लहरों की ऊंचाई 11 मीटर और बुधवार को 9 मीटर रहेगी। अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार को हवा की रफ्तार इतनी तेज हो सकती है कि उससे चीजें उड़ने या ट्रक पलटने का खतरा रहेगा। आशंका है कि डॉल्फिन तूफान तेज हवाओं के घेरे के साथ पश्चिम की ओर बढ़ते हुए ओकिनावा और अमामी क्षेत्रों के निकट पहुंचेगा। ओकिनावा में बुधवार से और अमामी में बृहस्पतिवार तक समुद्र बेहद अशांत रहने का अनुमान है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: म्यांमार की सेना समर्थित सरकार का कहना है कि लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सांग सूची ने अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस समिति आईसीआरसी के एक प्रतिनिधि से मुलाकात की है। सरकार के अनुसार म्यांमार में आईसीआरसी प्रतिनिधि आर्नोट देबबाक ने सोमवार सुबह राजधानी नेपिदो में आंग सांग सूची से मुलाकात की। इस खबर के साथ प्रकाशित तस्वीरों में दोनों को हाथ मिलाते देखा जा सकता है। एक अन्य तस्वीर में सूची को संभवतः अपने 81वें जन्मदिन का केक काटते दिखाया गया है, जो जून में था। आईसीआरसी के अनुसार सोमवार को हुई मुलाकात स्वतंत्रता से वंचित लोगों से मिलने के लिए उसके मानकों और प्रक्रियाओं के अनुरूप थी। उसका कहना है कि दोनों ने अकेले में बात की। सेना ने 2021 में तख्ता पलटकर सत्ता हथियाने के बाद से सूची को हिरासत में रखा हुआ है। सैन्य शासन के तहत चले एक मुकदमे में सूची को भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों में दोषी ठहराया गया था। सेना समर्थित सरकार ने अप्रैल में घोषणा की थी कि सूची को एक निर्धारित आवास में नजरबंद कर दिया गया है, लेकिन सरकार ने उनके सटीक ठिकाने का खुलासा अब तक नहीं किया है और ऐसे में सूची के स्वास्थ्य और रहन सहन की स्थिति को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। टोक्यो के एक चिड़ियाघर ने बताया है कि 3 शेरों की मौत हो गई है। पशु चिकित्सकों को संदेह है कि उनकी मौत तापघात से हुई। जुलाई मध्य में तामा चिड़ियाघर के 16 शेरों में से 10 बीमार पड़ गए। इनमें से कुछ अपने पैरों पर खड़े होने में असमर्थ हो गए और अन्य की खुराक कम हो गई। कर्मचारियों ने शेरों के शरीर को ठंडा करके और दवा देकर उनका इलाज करने की कोशिश की, फिर भी 28 जुलाई को 3 वर्षीय शेरनी की मौत हो गई। उसके बाद 31 जुलाई को 11 वर्षीय और 2 अगस्त को 15 वर्षीय शेरनी की भी मौत हो गई। चिड़ियाघर के अनुसार जांच के नतीजे आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा, लेकिन पोस्टमार्टम से पता चला है कि तीनों शेरनियों के शरीर में पानी की कमी थी और कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। 3 अन्य शेरों का इलाज अभी भी जारी है। चिड़ियाघर का कहना है कि वो इन मौतों को गंभीरता से ले रहा है और वो बाकी बीमार शेरों का इलाज करना जारी रखेगा और उनकी सेहत का ध्यान रखेगा। उसका कहना है कि जनता को शेर दोबारा कब दिखाए जाएंगे, इस बारे में अभी फैसला नहीं लिया गया है। जापान के 3 प्रमुख वित्तीय समूहों ने जून तक के 3 महीनों के लिए रिकॉर्ड शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जिसका एक कारण उच्च ब्याज दरों से आय में वृद्धि है। मित्सुबिशी यूएफजे ने 800 अरब येन यानी 5 अरब डॉलर से अधिक का शुद्ध लाभ कमाया, जो पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में येन में लगभग 48% की वृद्धि है। सुमितोमो मित्सुई ने 500 अरब येन का मुनाफा दर्ज किया, जो 33% का इजाफा है। वहीं मिजुहो ने 45% की वृद्धि के साथ 420 अरब येन का लाभ कमाया। सुमितोमो मित्सुई और मिजुहो के लिए लगातार 3रे वर्ष ये त्रैमासिक आंकड़े रिकॉर्ड उच्च हैं। ब्याज से होने वाली आय में बढ़ोतरी के अलावा विलय व अधिग्रहण सेवाओं से प्राप्त कमीशन ने भी मजबूत परिणामों में योगदान दिया।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 23वें पाठ में अपनी पसंद बताना सीखेंगे।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो होक्काइडो घूमकर टोक्यो वापस आ चुकी है। टोक्यो में वो अपने दोस्तों आयाका और माइक के साथ एक कैट कैफे में आई है। माइक अमरीकी है और जापान की पॉप संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानता है।
0: कैट कैफे ऐसी दुकानें होती हैं जहां आप चाय या कॉफी का आनंद लेते हुए बिल्लियों के साथ खेल सकते हैं।
1: तो आइए सुनते हैं 23वें पाठ की बातचीत।
2: ご飯を食べています。本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले ताम ने बिल्लियों को देखते हुए कहा,
2: कवाई,
1: कितनी प्यारी हैं।
2: मीना गोहान ओ तबेते इमासु,
1: सब खाना खा रही हैं।
0: फिर आया का बोली,
2: होंतो नी कवाई ने,
1: सचमुच प्यारी हैं।
0: उसके बाद आया का ने बिल्लियों को आवाज लगाई,
2: ओइदे ओइदे,
1: इधर आओ इधर आओ।
0: आया का ने अपने पास आई बिल्ली को पुचकारते हुए कहा,
2: वाताशी वा कोनो को गा सुकी,
1: मुझे ये वाली पसंद है।
0: फिर ताम ने दूसरी बिल्ली को सहलाते हुए कहा,
2: वाताशी वा कोनो नेको गा सुकी देसु,
1: मुझे ये बिल्ली पसंद है।
0: माइक भी माहौल का आनंद ले रहा था। वो बोला,
3: नेको कैफे ते रिलैक्स देकिरु योने,
0: कैट कैफे आकर बहुत सुकून मिलता है ना।
1: तब ताम ने जवाब दिया,
2: होंतो देसु ने,
1: सही कहा।
0: कैट कैफे में आमतौर पर अलग अलग तरह की बिल्लियां होती हैं। आप भी उनमें से अपनी मनपसंद बिल्ली के साथ खेल सकते हैं।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
2: वाताशी वा कोनो नेको गा सुकी देसु,
1: यानी मुझे ये बिल्ली पसंद है। ये वाक्य याद करके आप अपनी पसंद बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
4: वाताशी
0: का अर्थ है मैं और उसके बाद लगा है वा, जो विषय सूचक कारक है। उसके बाद आया है
4: नेको
0: यानी बिल्ली।
4: कोनो नेको
0: का अर्थ है ये बिल्ली।
1: आगे है
4: सुकी देसु,
1: जिसमें से
4: सुकी
1: एक ना विशेषण है और उसका मतलब है पसंद।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चीज पसंद हो उसके नाम के बाद कारक गा लगाते हैं और उसके बाद बोलते हैं
4: सुकी देसु।
0: अगर आपको बिल्लियां यानी
4: नेको
0: पसंद हैं तो वाक्य बनेगा
4: नेको गा सुकी देसु।
1: ध्यान रखिएगा कि नेको ओ सुकी देसु बोलना सही नहीं है।
4: सुकी देसु
1: का
4: सुकी
1: यानी पसंद क्रिया नहीं है, ना विशेषण है। विशेषण जिस चीज की विशेषता बताता है उसके नाम के बाद कारक ओ नहीं गा लगाया जाता है।
0: अगर हम आयाका की पंक्ति पर ध्यान दें तो उसने भी कहा था वाताशी वा कोनो को गा सुकी, जिसका अर्थ है मुझे ये वाली पसंद है।
1: करीबी मित्र से बात करते समय आप अंत का
4: देस
1: छोड़ सकते हैं और
4: सुकी देसु
1: की जगह सिर्फ
4: सुकी
1: बोल सकते हैं।
0: एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि ताम और आयाका दोनों ने अपने वाक्य में वाताशी वा यानी मैं लगाया, लेकिन हम आपको पिछले पाठों में बता चुके हैं कि अगर संदर्भ स्पष्ट हो तो ये शब्द बोलने की जरूरत नहीं होती है।
1: यहाँ ताम और आयाका अपनी अपनी पसंद बता रही हैं और इस बात पर जोर दे रही हैं कि उनकी पसंद एक दूसरे से अलग है। जैसे ताम ने कहा,
4: वाताशी वा कोनो नेको गा सुकी देसु,
1: यानी मुझे ये बिल्ली पसंद है। यहाँ उसने खास तौर से कहा
4: वाताशी वा।
0: तो अब उच्चारण का अभ्यास करते हैं, सुनिए और दोहराइए।
4: सुकी देसु, कोनो नेको गा सुकी देसु, वाताशी वा कोनो नेको गा सुकी देसु।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें मनपसंद खाने की चीज की बात हो रही है।
5: तबेमोनो वा नानी गा स्की देस का?
2: सुशी गा स्की देस।
0: इस बातचीत में पहले पुरुष ने पूछा,
5: तबेमोनो वा नानी गा स्की देस का?
0: खाने में क्या पसंद है?
1: यहाँ
4: तबेमोनो
1: का अर्थ है खाना या खाने की चीज। उसके बाद लगा है विषय सूचक कारक वा।
4: नानी
1: एक प्रश्नवाचक शब्द है जिसका अर्थ है क्या। तो
4: नानी गा स्की देस का
1: अर्थ है क्या पसंद है।
0: महिला ने उत्तर दिया,
2: सुशी गा स्की देस।
1: सुशी पसंद है।
0: सुशी एक जापानी व्यंजन है जो पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है।
1: तो अब ये बातचीत दोबारा सुनिए और उत्तर दोहराइए।
4: तबेमोनो वा नानी गा स्की देस का? सुशी गा स्की देस।
0: अब वाक्य बनाने का अभ्यास करते हैं। मान लीजिए आपको लोकप्रिय जापानी संगीत यानी जे पॉप पसंद है, तो ये बात कैसे बताएंगे? जे पॉप को जापानी में कहते हैं
4: जे पॉप।
0: तो कोशिश कीजिए,
2: जे पॉप गा स्की देस।
1: अब मान लीजिए आपको जापानी चित्र कथाएं पसंद हैं, जिन्हें जापानी भाषा में कहते हैं
4: मांगा।
1: तो अपनी पसंद बताने की कोशिश कीजिए,
5: मांगा गा स्की देस।
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
2: होंतो देसु ने।
4: होंतो
1: है
4: होंतो
1: यानी सही कहा का लघु रूप।
4: होंतो देसु ने
1: का भी मतलब है सही कहा। इस वाक्य का इस्तेमाल किसी के विचार या राय पर सहमति दिखाने के लिए किया जाता है।
0: तो आप भी सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: होंतो देसु ने।
1: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: कवाई मीना गोहान ओ तबेते इमास।
6: होंतो नी कवाई ने। ओइदे ओइदे। वाताशी वा कोनो को गा स्की।
2: वाताशी वा कोनो नेको गा स्की देस।
3: नेको काफे त्ते रिलैक्स देकिरु यो ने।
2: होंतो देसु ने।
7: バイクと一緒にポップカルチャ
0: ー। अब हम लेकर आए हैं अंश माइक के साथ पॉप संस्कृति, जिसमें आज हम बताएंगे जापान में तरह तरह के दिलचस्प कैफे के बारे में।
1: जापान में ऐसे बहुत सारे कैफे बन गए हैं जहां केवल खाना पीना ही मुख्य आकर्षण नहीं है। ऐसा ही एक उदाहरण है कैट कैफे, जिसका आज के पाठ में जिक्र है।
0: जिन लोगों को उल्लू या खरगोश पसंद हैं, वे उल्लू या खरगोश कैफे में जा सकते हैं। आपकी जापानी भाषा बहुत अच्छी ना भी हो तो भी आप ऐसी जगह नए दोस्त बना सकते हैं, क्योंकि वहां आए सारे ग्राहकों की रुचि एक जैसी होती है।
1: मेड कैफे थोड़े अलग होते हैं, वहां

0: खाना परोसने वाली लड़कियां फ्रेंच मेड जैसे कपड़े पहनती हैं और ग्राहकों को मालिक कहकर संबोधित करती हैं।
1: इसके अलावा जापान में आशी यू कैफे भी हैं, जहां आप गर्म पानी में पैर डालकर बैठ सकते हैं। प्लेनेटेरियम यानी तारामंडल कैफे भी हैं, जहां आप चाय पीते हुए सितारों की दुनिया में खो सकते हैं।
0: इसके अलावा एनिमे और गेम्स पर आधारित कैफे तो हैं ही,
1: तो आप भी जापान में अपना मनपसंद कैफे जरूर ढूंढिएगा।
0: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
1: अगले पाठ में अपनी नापसंद बताना सीखेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।

0: तो आप पहले भी सीख चुके हैं इसके मायनी हैं क्या। नानी गा स्की देस का के मायनी हुए क्या पसंद है।
1: सुशी गा स्की देस,
2: सुशी पसंद है।
0: सुशी अब दुनिया भर में मशहूर और मकबूल जापानी खाना है।
2: तो सामीन सुनिए और दोहराइए।
3: तादेमोनो वा नानी गा स्की देस का। सुशी गा स्की देस। सुशी गा स्की देस।
2: जी सामीन, यकीनन आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
0: अब कुछ और पसंदीदा चीजें बताने की मशक करते हैं। अगर आपको जे पॉप पसंद है तो ये बात कैसे कहेंगे। जे पॉप का जापानी तलफ्फुज है
3: जे पॉप। जे पॉप।
0: तो सामीन कोशिश करें।
1: जे पॉप गा स्की देस। जे पॉप गा स्की देस।
0: और अगर आपको कॉमिक्स या कार्टून पसंद है तो इसका इजहार कैसे करेंगे। कॉमिक्स की जापानी है
3: मांगा। मांगा।
4: मांगा गा स्की देस। मांगा गा स्की देस।
0: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का जुमला मकाल में से ताम का जुमला है, इसे इसी तरह याद कर लें।
1: होंतो देसने।
0: होंतो दरअसल होंतो यानी वाकई की मुख्तसर शक्ल है। होंतो देसने यानी वाकई ऐसा ही है, किसी की बात से इत्तेफाक करने के लिए इस्तेमाल होता है। देसने का आखिरी ने भी इत्तेफाक करने के लिए ही इस्तेमाल होता है।
2: तो अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुनिए।
5: होंतो देसने।
6: होंतो देसने।
5: होंतो देसने।
2: सामीन अब आपकी बारी है, तो सुनिए और दोहराइए।
3: होंतो देसने।
0: अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उन हिस्सों पर खुसूसी ध्यान दें जिनमें आयाका और ताम अपनी अपनी पसंद का इजहार करती हैं।
1: कवाई। मिन्ना गोहान ओ तबेते इमास। होंतो नी कवाई ने। ओइदे ओइदे। वाताशी वा कोनो को गा स्की। वाताशी वा कोनो नेको गा स्की देस।
7: नेको काफे त्ते रिलैक्स देकिरु यो ने।
1: होंतो देस ने।
8: माइक तो इश्चो नी पॉप कल्चर।
2: अब माइक के साथ पॉप कल्चर का कॉर्नर। आज का मौजू है जापान के दिलचस्प कैफे।
0: आजकल मुख्तलिफ अकसाम के ऐसे कैफे भी खुल रहे हैं जहाँ खाने पीने के अलावा दीगर दिलचस्पियाँ भी हैं। मकालमे का मकाम कैट कैफे भी ऐसी ही एक मिसाल है। जानवरों वाले कैफे में बिल्लियों के अलावा उल्लुओं या खरगोशों वाले कैफे भी लोगों में मकबूल हैं।
2: जो लोग जापानी बोलने में ज्यादा माहिर नहीं वो भी इन कैफेज में निस्बतन आसानी से दोस्त बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ जाने वाले तमाम लोगों में ये बात मुश्तरक होती है कि वो जानवरों को पसंद करते हैं।
0: जानवरों वाले कैफे से हटकर और भी कई अकसाम के कैफे पाए जाते हैं। एक किस्म मैट कैफे की है। इनमें घरेलू मुलाजमाओं का मखसूस लिबास पहनी हुई वेट्रेस ग्राहक को गोशुजिन सामा यानी साहब या मालिक कहकर मुखातिब करती हैं। इनके अलावा फुट बाथ कैफे में थकावट दूर करने के लिए पाँव नीम गर्म पानी में डालकर बैठते हैं। इसी तरह प्लानिटेरियम कैफे में चाय की चुस्कियाँ लेते हुए तारों भरे आसमान के मशहूर कुन मंजर से लुत्फंदोज हुआ जा सकता है।
2: यानी जापान में इंतहाई मुख्तलिफ अकसाम के कैफे पाए जाते हैं।
0: जी हाँ, और यकीनन इस फहरिस्त में एनीमे और गेम कैफे भी शामिल हैं।
2: मुझे यकीन है कि सामीन जापान में अपने मशगले के लिहाज से कैफे जरूर ढूंढ सकेंगे।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 4 अगस्त मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानों से सुने समाचार।

जापान के कुमामोतो प्रीफेक्चर में आए शक्तिशाली भूकंप को एक सप्ताह पूरा हो गया है। इस भूकंप में कई लोग मारे गए और हजारों मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गौरतलब है कि 28 जुलाई को मैग्नीट्यूड 7.1 का भूकंप आया था। उकी शहर और हिकावा नगर में इस भूकंप की तीव्रता जापान के भूकंप मापी पैमाने पर 7 दर्ज की गई थी, जो सर्वोच्च स्तर है। मंगलवार सुबह 7:30 बजे तक कुमामोतो प्रीफेक्चर 38 मौतों की पुष्टि कर चुका था, जिनमें से एक की मौत शायद आपदा संबंधी कारणों से हुई है। मंगलवार दोपहर 2 बजे तक प्रीफेक्चर के 146 आश्रय स्थलों में 7,600 से अधिक लोग रह रहे थे। 13,300 से अधिक मकानों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से करीब 700 पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। इस क्षेत्र में भीषण गर्मी भी लोगों की तकलीफ बढ़ा रही है। सोमवार को प्रीफेक्चर में तापमान रिकॉर्ड तोड़ते हुए 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। इसके अलावा क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधियां अब भी उच्च बनी हुई हैं। पिछले सप्ताह के भूकंप के बाद से मंगलवार सुबह 10 बजे तक 390 से अधिक झटके महसूस किए जा चुके थे। कुमामोतो प्रीफेक्चर में आए शक्तिशाली भूकंप को एक सप्ताह पूरा हो चुका है और ऐसे में एक विशेषज्ञ ने आश्रय स्थलों में रहन सहन की बेहतर परिस्थितियों की मांग की है, ताकि हताहतों की संख्या को बढ़ने से रोका जा सके। गौरतलब है कि आपदा संबंधी कारणों से एक महिला के मारे जाने की खबर मिली है। माना जाता है कि इस महिला ने एक कार में शरण ली थी, जिस दौरान तापघात से उसकी मौत हो गई। जापानी रेडक्रॉस साइतामा अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी सुबोई मोतोहिरो ने आगाह किया है कि अगर आश्रय स्थलों में रहन सहन की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि 2024 के नोतो प्रायद्वीप भूकंप के लगभग 7 से 10 दिन बाद आपदा संबंधी मौतों की संख्या चरम पर पहुंच गई थी। सुबोई ने रहन सहन की बिगड़ती परिस्थितियों के कारण तनाव होने से दिल के दौरे और अस्थमा के बढ़ते जोखिम के बारे में चेतावनी दी है। उनका ये भी कहना है कि कुमामोतो में भीषण गर्मी से तापघात की समस्या और भी गंभीर हो सकती है। उन्होंने आश्रय स्थलों में रहन सहन की परिस्थितियां सुधारते हुए उन्हें बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। शक्तिशाली तूफान डॉल्फिन के मंगलवार को पश्चिम की ओर बढ़ने के कारण टोक्यो के ओगासावारा द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चल रही हैं। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने डॉल्फिन तूफान को विशाल और बेहद शक्तिशाली बताया है। अधिकारियों ने द्वीपवासियों से ऊंची लहरों और तेज हवाओं से सावधान रहने तथा बुधवार तक जरूरत न पड़ने पर घर से बाहर न निकलने का आग्रह किया है। मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार ओगासावारा में बुधवार तक समुद्र बेहद अशांत रहेगा। मंगलवार को लहरों की ऊंचाई 11 मीटर और बुधवार को 9 मीटर रहेगी। अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार को हवा की रफ्तार इतनी तेज हो सकती है कि उससे चीजें उड़ने या ट्रक पलटने का खतरा रहेगा। आशंका है कि डॉल्फिन तूफान तेज हवाओं के घेरे के साथ पश्चिम की ओर बढ़ते हुए ओकिनावा और अमामी क्षेत्रों के निकट पहुंचेगा। ओकिनावा में बुधवार से और अमामी में बृहस्पतिवार तक समुद्र बेहद अशांत रहने का अनुमान है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: म्यांमार की सेना समर्थित सरकार का कहना है कि लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सांग सूची ने अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस समिति आईसीआरसी के एक प्रतिनिधि से मुलाकात की है। सरकार के अनुसार म्यांमार में आईसीआरसी प्रतिनिधि आर्नोट देबबाक ने सोमवार सुबह राजधानी नेपिदो में आंग सांग सूची से मुलाकात की। इस खबर के साथ प्रकाशित तस्वीरों में दोनों को हाथ मिलाते देखा जा सकता है। एक अन्य तस्वीर में सूची को संभवतः अपने 81वें जन्मदिन का केक काटते दिखाया गया है, जो जून में था। आईसीआरसी के अनुसार सोमवार को हुई मुलाकात स्वतंत्रता से वंचित लोगों से मिलने के लिए उसके मानकों और प्रक्रियाओं के अनुरूप थी। उसका कहना है कि दोनों ने अकेले में बात की। सेना ने 2021 में तख्ता पलटकर सत्ता हथियाने के बाद से सूची को हिरासत में रखा हुआ है। सैन्य शासन के तहत चले एक मुकदमे में सूची को भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों में दोषी ठहराया गया था। सेना समर्थित सरकार ने अप्रैल में घोषणा की थी कि सूची को एक निर्धारित आवास में नजरबंद कर दिया गया है, लेकिन सरकार ने उनके सटीक ठिकाने का खुलासा अब तक नहीं किया है और ऐसे में सूची के स्वास्थ्य और रहन-सहन की स्थिति को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। टोक्यो के एक चिड़ियाघर ने बताया है कि तीन शेरों की मौत हो गई है। पशु चिकित्सकों को संदेह है कि उनकी मौत तापघात से हुई। जुलाई मध्य में तामा चिड़ियाघर के 16 शेरों में से 10 बीमार पड़ गए। इनमें से कुछ अपने पैरों पर खड़े होने में असमर्थ हो गए और अन्य की खुराक कम हो गई। कर्मचारियों ने शेरों के शरीर को ठंडा करके और दवा देकर उनका इलाज करने की कोशिश की, फिर भी 28 जुलाई को 3 वर्षीय शेरनी की मौत हो गई। उसके बाद 31 जुलाई को 11 वर्षीय और 2 अगस्त को 15 वर्षीय शेरनी की भी मौत हो गई। चिड़ियाघर के अनुसार जांच के नतीजे आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा, लेकिन पोस्टमार्टम से पता चला है कि तीनों शेरनियों के शरीर में पानी की कमी थी और कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। तीन अन्य शेरों का इलाज अभी भी जारी है। चिड़ियाघर का कहना है कि वो इन मौतों को गंभीरता से ले रहा है और वो बाकी बीमार शेरों का इलाज करना जारी रखेगा और उनकी सेहत का ध्यान रखेगा। उसका कहना है कि जनता को शेर दोबारा कब दिखाए जाएंगे, इस बारे में अभी फैसला नहीं लिया गया है। जापान के तीन प्रमुख वित्तीय समूहों ने जून तक के 3 महीनों के लिए रिकॉर्ड शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जिसका एक कारण उच्च ब्याज दरों से आय में वृद्धि है। मित्सुबिशी यूएफजे ने 800 अरब येन यानी 5 अरब डॉलर से अधिक का शुद्ध लाभ कमाया, जो पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में येन में लगभग 48% की वृद्धि है। सुमितोमो मित्सुई ने 500 अरब येन का मुनाफा दर्ज किया, जो 33% का इजाफा है। वहीं मिजुहो ने 45% की वृद्धि के साथ 420 अरब येन का लाभ कमाया। सुमितोमो मित्सुई और मिजुहो के लिए लगातार तीसरे वर्ष ये त्रैमासिक आंकड़े रिकॉर्ड उच्च हैं। ब्याज से होने वाली आय में बढ़ोतरी के अलावा विलय व अधिग्रहण सेवाओं से प्राप्त कमीशन ने भी मजबूत परिणामों में योगदान दिया।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: NHK World जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 23वें पाठ में अपनी पसंद बताना सीखेंगे।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो होक्काइडो घूमकर टोक्यो वापस आ चुकी है। टोक्यो में वो अपने दोस्तों आयाका और माइक के साथ एक कैट कैफे में आई है। माइक अमरीकी है और जापान की पॉप संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानता है।
0: कैट कैफे ऐसी दुकानें होती हैं जहां आप चाय या कॉफी का आनंद लेते हुए बिल्लियों के साथ खेल सकते हैं।
1: तो आइए सुनते हैं 23वें पाठ की बातचीत।
2: ご飯を食べています。本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。

0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले ताम ने बिल्लियों को देखते हुए कहा,
1: कवाई,
2: कितनी प्यारी हैं।
1: मीना गोहान ओ तबेते इमास।
2: सब खाना खा रही हैं।
0: फिर आया का बोली,
1: होंतो नी कवाई ने,
2: सचमुच प्यारी हैं।
0: उसके बाद आयाका ने बिल्लियों को आवाज लगाई,
1: ओइदे ओइदे,
2: इधर आओ इधर आओ।
0: आयाका ने अपने पास आई बिल्ली को पुचकारते हुए कहा,
1: वाताशी वा कोनो को गा सुकी,
2: मुझे ये वाली पसंद है।
0: फिर ताम ने दूसरी बिल्ली को सहलाते हुए कहा,
1: वाताशी वा कोनो नेको गा सुकी देस,
2: मुझे ये बिल्ली पसंद है।
0: माइक भी माहौल का आनंद ले रहा था। वो बोला,
3: नेको काफे ते रिलैक्स देखी रियो ने,
0: कैट कैफे आकर बहुत सुकून मिलता है ना।
2: तब ताम ने जवाब दिया,
1: होंतो देस ने,
2: सही कहा।
0: कैट कैफे में आमतौर पर अलग अलग तरह की बिल्लियां होती हैं। आप भी उनमें से अपनी मनपसंद बिल्ली के साथ खेल सकते हैं।
2: आज का मुख्य वाक्य है,
1: वाताशी वा कोनो नेको गा सुकी देस,
2: यानी मुझे ये बिल्ली पसंद है। ये वाक्य याद करके आप अपनी पसंद बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
4: वाताशी
0: का अर्थ है मैं, और उसके बाद लगा है वा, जो विषय सूचक कारक है। उसके बाद आया है
4: नेको,
0: यानी बिल्ली।
4: कोनो नेको
0: का अर्थ है ये बिल्ली।
2: आगे है
4: स्की देस,
2: जिसमें से
4: स्की
2: एक ना विशेषण है और उसका मतलब है पसंद।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चीज पसंद हो उसके नाम के बाद कारक गा लगाते हैं और उसके बाद बोलते हैं
4: स्की देस।
0: अगर आपको बिल्लियां यानी
4: नेको
0: पसंद हैं तो वाक्य बनेगा
4: नेको गा स्की देस।
2: ध्यान रखिएगा कि नेको ओ स्की देस बोलना सही नहीं है।
4: स्की देस
2: का
4: स्की
2: यानी पसंद क्रिया नहीं है, ना विशेषण है। विशेषण जिस चीज की विशेषता बताता है उसके नाम के बाद कारक ओ नहीं गा लगाया जाता है।
0: अगर हम आयाका की पंक्ति पर ध्यान दें तो उसने भी कहा था वाताशी वा कोनो को गा सुकी, जिसका अर्थ है मुझे ये वाली पसंद है।
2: करीबी मित्र से बात करते समय आप अंत का
4: देस
2: छोड़ सकते हैं और
4: स्की देस
2: की जगह सिर्फ
4: स्की
2: बोल सकते हैं।
0: एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि ताम और आयाका दोनों ने अपने वाक्य में वाताशिवा यानी मैं लगाया, लेकिन हम आपको पिछले पाठों में बता चुके हैं कि अगर संदर्भ स्पष्ट हो तो ये शब्द बोलने की जरूरत नहीं होती है।
2: यहाँ ताम और आयाका अपनी अपनी पसंद बता रही हैं और इस बात पर जोर दे रही हैं कि उनकी पसंद एक दूसरे से अलग है। जैसे ताम ने कहा
4: वाताशिवा कोनो नेको गा सुकी देस,
2: यानी मुझे ये बिल्ली पसंद है। यहाँ उसने खास तौर से कहा
4: वाताशी वा।
0: तो अब उच्चारण का अभ्यास करते हैं, सुनिए और दोहराइए।
4: स्की देस, कोनो नेको गा स्की देस, वाताशी वा कोनो नेको गा स्की देस।
2: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें मनपसंद खाने की चीज की बात हो रही है।
5: तबेमोनो वा नानी गा सुकी देसु का?
1: सुशी गा सुकी देसु।
0: इस बातचीत में पहले पुरुष ने पूछा
5: तबेमोनो वा नानी गा सुकी देसु का,
0: खाने में क्या पसंद है।
2: यहाँ
4: तबेमोनो
2: का अर्थ है खाना या खाने की चीज। उसके बाद लगा है विषय सूचक कारक वा।
4: नानी
2: एक प्रश्नवाचक शब्द है जिसका अर्थ है क्या। तो
4: नानी गा सुकी देसु
2: का अर्थ है क्या पसंद है।
0: महिला ने उत्तर दिया
1: सुशी गा सुकी देसु,
2: सुशी पसंद है।
0: सुशी एक जापानी व्यंजन है जो पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है।
2: तो अब ये बातचीत दोबारा सुनिए और उत्तर दोहराइए।
4: तबेमोनो वा नानी गा सुकी देसु का? सुशी गा सुकी देसु।
0: अब वाक्य बनाने का अभ्यास करते हैं। मान लीजिए आपको लोकप्रिय जापानी संगीत यानी जे पॉप पसंद है, तो ये बात कैसे बताएंगे? जे पॉप को जापानी में कहते हैं
4: जे पॉप।
0: तो कोशिश कीजिए।
1: जे पॉप गा सुकी देस।
2: अब मान लीजिए आपको जापानी चित्र कथाएं पसंद हैं, जिन्हें जापानी भाषा में कहते हैं
4: मांगा।
2: तो अपनी पसंद बताने की कोशिश कीजिए।
5: मांगा गा सुकी देस।
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
1: होंतो देसु ने।
4: होंतो
2: है
4: होंतो,
2: यानी सही कहा का लघु रूप।
4: होंतो देसु ने
2: का भी मतलब है सही कहा। इस वाक्य का इस्तेमाल किसी के विचार या राय पर सहमति दिखाने के लिए किया जाता है।
0: तो आप भी सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: होंतो देसु ने।
2: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
1: कवाई, मिन्ना गोहान ओ तबेते इमास। होंतो नी कवाई ने। ओइदे ओइदे। वाताशी वा कोनो को गा सुकी। वाताशी वा कोनो नेको गा सुकी देस।
3: नेको काफे त्ते रिलैक्स देकिरु यो ने।
1: होंतो देसु ने।
3: バイクと一緒にポップカルチャ
0: ー。 अब हम लेकर आए हैं अंश माइक के साथ पॉप संस्कृति, जिसमें आज हम बताएंगे जापान में तरह तरह के दिलचस्प कैफे के बारे में।
2: जापान में ऐसे बहुत सारे कैफे बन गए हैं जहां केवल खाना पीना ही मुख्य आकर्षण नहीं है। ऐसा ही एक उदाहरण है कैट कैफे, जिसका आज के पाठ में जिक्र है।
0: जिन लोगों को उल्लू या खरगोश पसंद हैं, वे उल्लू या खरगोश कैफे में जा सकते हैं। आपकी जापानी भाषा बहुत अच्छी ना भी हो, तो भी आप ऐसी जगह नए दोस्त बना सकते हैं, क्योंकि वहां आए सारे ग्राहकों की रुचि एक जैसी होती है।
2: मेड कैफे थोड़े अलग होते हैं। वहां खाना परोसने वाली लड़कियां फ्रेंच मेड जैसे कपड़े पहनती हैं और ग्राहकों को मालिक कहकर संबोधित करती हैं।
0: इसके अलावा जापान में आशी यू कैफे भी हैं, जहां आप गर्म पानी में पैर डालकर बैठ सकते हैं। प्लैनेटेरियम यानी तारामंडल कैफे भी हैं, जहां आप चाय पीते हुए सितारों की दुनिया में खो सकते हैं।
2: इसके अलावा एनीमे और गेम्स पर आधारित कैफे तो हैं ही।
0: तो आप भी जापान में अपना मनपसंद कैफे जरूर ढूंढिएगा।
2: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में अपनी नापसंद बताना सीखेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।